0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मन आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ in the world.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Man.

Cześć.

Hasta.

trust me. Lekin

happy.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू। निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हट चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती, सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जांपल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्राह्मण जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देख कोई कोई के चेहरे जो होती है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानती है तभी हंसती है। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखते हैं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारथ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है गर्भ इंद्रियोचित बनना। हर गर्भ इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Christian sorority kyun agar swamin se nahi hai.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगम योग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने चाहते दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है, आपके बहने है, दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सी बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, फारिश

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते।

0: सिर्फ बाप के लिए कहती है, ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म जो बोल जो वृत्ति जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्म को दिए बैठने के लिए, मुरली सुनाने के लिए नियमित टीचर्स बाप की गद्दी मिली हुई। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्तबा दिया। टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते महानो महत्व वाले है ना। ऐसे ऐसे है काफी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले वे सर्टिफिकेट। बाप दादा तो देखते रहते क्या बकरे, ये तो बकरी हुई पहले ही है, बकरे हुए को क्या बकरे, प्रेम में बकरे तब तो टीचर बनी है। अभी कान दादी पकड़ेंगे, बाप तो प्यार में पकड़ेंगे। नहीं फिर भी हिम्मत रख के बनने में तो बनी है होते हैं, तो इतने सेंटर कैसे खुलते। मुबारक हो आप सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संग

Sí.

0: समान बनना कोई मुश्किल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: sé que ama el té. Fuerte. Tu curva arquiten. Fuerte. Canten fichiche. Y se rupse. Curvar como nao. Koi na koi. Fishish fardan. Amrit vele se. Apane. Buddhi me emerge rakho. Fardan to anek hai. लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदान ही दिन में वरदान स्वरूप बन वरदान को रिपीट नहीं करना है लेकिन वरदान स्वरूप बनना और चेक करते रहो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ रंग है

Jessie Bob. Ucete, uče. Esi. Sangam Yoga.

René, c'est...

Swiss double lolly.

to niasi. Niadi. Parmatma ki pyadi. To nasha rehte hai na.

c'est pas votre.

बातें। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Jack।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी

सकता है, कभी कभी हो जाएगा।

Sí.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

और सेके अधिकारी तो बन गए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मानो स्टूडेंट बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी सब में अच्छा, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइट लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम बिजी रहे और पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है? करना या ना करना की बात है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब से होगा करे। तो ये आपने चांस दे दिया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है, मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है। तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते हैं।

0: उन बच्चों को देख, सूखम में उनों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ਅੱਠ ਸੁਪਕਾ ਚਿਕਿਆ ਦੋ।

0: 世界，我见你，阿拉贝里曼没报答你，一道大爷，一道真大爷，真里头什么真的，把这大光写的。
1: Oh, man.

혼도 어딘 샹디나. 짓니 보라디 어디에나. 또, 니가 게 Somebody.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल की

0: यह देखे अटेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

a pee-pee.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

3.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See.

0: इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस, स्टेज पर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये फ्रिश्ट।

तो सहज विधि पहले भी बताई है, इसमें और मेरे को परिवर्तन करने याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हुई आत्मा, मैं शब्द बोलो और

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। Oh, yeah.

Arch.

0: गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कंबाइंड है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

خوشی.

सदा खुश रहेंगे। ये मत है जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है वो इस बारी हम यहां छोड़ के जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। इतनी मत समझते हो तो दो दुआ दो रहो। अच्छा।

हिम्मत दे, हिम्मत दे।

trap.

सारे लाइफ में हद का मेरा बन, हद का मैं बन से न्यारी, रही है उसकी रिजल्ट। बीमारी कितनी भी है सिनेरी, एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बार बने हैं।

भी बनने वाले हो। इससे उमंग से, उत्साह से और तेज चलो। पाप को आप

0: செபுத்தி பண்ணி செபுத்தி பண்ண
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चे

สมานปัตเนเมมาร์สเลนีSomehow

Shh.

0: शब्दों का एक मैं दूसरा मेरा करावना शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता। ऐसे बाप के प्यारे लेकिन सिर्फ चेक करना कोई सने में लीकेज नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाता। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। पटको नहीं, कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है। अपने सीट से अपसेट नहीं हो, आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया, आने दो, देखते हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: You are.

Radio Atre.

Sonne.

Lucien.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हसर आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये, बाप बंदा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताए, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अबे हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने, समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों को

बच्चों का

0: Kapan bau kalau kipakuan forsatira absabibi yei puchte ona kipap kiparta kieta kapaur kese hogi to prepako vario tak pohonchi सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों का, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाने का समापति करनी है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है, दूसरे को नहीं देखता। ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदलेंगे, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, न पहाड़ हटेगा पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचती है सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन ताकों से भी मुक्त करो, मुक्ति वरश।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेम।

जब संकल्प भी है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: वायुमंडल परिवर्तन करना है। अपने मन में किसी भी एक आत्मा के पृथ्वी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बांधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा। वायुमंडल में पावर नहीं है। बच्चे कहती है वो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देती है, बाबा आपको पता नहीं है, वो आत्मा है ही ऐसी। So सब जज बन गए हो एक दो के। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी
1: प्यार सर्व बच्चों को मीठा

spot me.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उस पे पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के प्रति तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर मतलब करें सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देवभान नहीं।
2: डायरेक्ट दाता से लो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को

स्थितियों के बीच में

0: cosa, Teo. Easy practice. So you have me. And poker, Teo.
1: Second.

same practice. Sare din mein jab bhi samay mile baar baar man ko ekagar karke dekho, jahan chaho jo chaho मन एकाग्र पुरुषार्थ एक मिनट लगे एक सेकंड में फुल स्टॉप क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल मेरा मन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पर ही चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, नहीं रखनी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं, बस अब थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल समाते रहो। Yeah.

0: खुदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है। शनि में समाया हुआ रहे, शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सिस्टर सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना? पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है सबका। तो बाप दादा आज यही कहते हैं शनि की शक्ति सदा कार्य में लगाओ, सहजना योग लगाते हो ते भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब शनि की चंद्र छाया में रहेंगे, शनि की चंद्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। साखट से बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना देती है, निकलो ही नहीं, समाये रहो। शनि कोई भी कार्य करते हुए शनि को नहीं भूल सकता, शनि में खोया हुआ हर कार्य करता। जैसे आज के दिन कोई नहीं, ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो गया। zaman sel çıpanadık. Yo çizgi saat saniye. O sıca hesap bana da.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी व आत्म अपमानी हलचल में अचल बना सकते हो। टाइम लगेगा क्या होगा? अभी ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां जाओ वहां स्थित कर सकते हो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बस।

Minha vingança.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Hey.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: इसमें हिम्मत है ना? हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा के छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही सिखा दी, खुश दिमाग और खुश किस्मत। हर एक का चेहरा ऐसे हो तो अभी भी अच्छी की उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sucks.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उस करके बैठ जाए

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के लिए जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शुरू की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास से

这一夜，求你们等，们来这里，也爱心上。Oh.

Suara.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे वो माइक माना जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसे मेरी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो कर रही हो, खाली तो नहीं बैठे हो। जैसे पाप फाट डालती है ना, आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पाप लगाओ, एटम पाप नहीं, आत्म पाप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

चाहे

0: दुष्ट करने का लक्ष्य रखकर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे सोचते हैं

Rusia. Si baja tiene de. Pero mamá, va a tener que.

0: सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते बच्चों के बिना। बाप को भी मजा नहीं आता, जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं। ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता, अकेले नहीं रहते साथ में रहते, साकार में तो सात खान भाव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते, जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते, साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते, बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या। तो इसी में ही बिजी रहते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Scheiße.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है क्या? बाहर से मात्र टकराने है, देखना क्या स्वयं किनारा कर लो। या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चले तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेले की दुनिया, झमेले तो आएंगे। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए? झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: व्यक्ति भी है
4: आता है वो विशेषता अज्ञान में होती है क्या ईश्वरी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय फिरती द्वारा

Monster Schirm.

poate avora. Cinci carna. Uskia vše. Anyway.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आजकल परमात्मा भी सेम

Coro.

0: passé. Tu sei va cordeire teu, or cordeire nae, giornane. Leken api. Monza.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग की लास्ट का यही फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रहे उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई यहाँ आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी कहते हैं, आज फलानी थेरेपी है आज फलानी, तो ये कलयुग का सीजन का शक्तिशाली फल, इसलिए घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमार कॉन्शियस होके नहीं, तनबी तो देखेगा और वो तो नहीं है, नहीं बात नहीं है, इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। आई और उसको फ्रूट तो खिला दो और विदाई।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्म जीवन की मोक्ष सदा केयरफुल और केयरफुल मोक्ष बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना तो क्या कंट्रेस्ट लिया है कि प्रकृति के मूड भी चेंज करे? प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। चेंज होती है कि नहीं? हाँ होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया कंबाइंड से, अकेले हो गए। ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, ठीक है। मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मोटाफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखता है, परों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते। ऐसा खेल नहीं करो। क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, हर बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं, तो क्या दोनों बाप की Jay.

अच्छा मैं आगे बढ़ सकती। दूसरा को बदलने की फिरती रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की फिरती कहाँ कहाँ कम हो जाती। अभी दूसरे को देखना ये फिरती चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो होता ही है, ये तो चल सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है। पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन सलोपकन भी है, सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। वो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो, इसके भी विधि बताते हैं। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास के वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाए। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिमान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द कोई साथ में होता है।

0: कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरी साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरी साथ है। हर एक कहता है मेरी साथ है, मेरा साथी है ना। ऐसे मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो। हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो दिखती नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ। किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त चोरो नहीं, जो अलग अलग बुशारत करते हो ना उसमें थक जाते हो। आज मन सागा किया, कल वाच जागा किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही पुशारत करो, साखी का तख्त नहीं छोड़ना और खुश दिमाग तख्त नशी। साखी बन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे दबी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदरियत।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

0: kill kebab. Sedap betul. Hei, betul suara. Pernah nih berita suara bapa betul tak? Tuh lagi. Fisik saja. तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग। तो जैसे होली का दूसरा अर्थ है होली। हो गया जो पीता सो पीता। होली तो होली करना आता है जो हो चुका वो हो चुका। भी सबकी है, आप जलाते हो वो भी जलाते हैं। फिर बनाते बिना जलाने के मनाते नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बात, बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो, क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने। तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी, तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजों से माना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

शक्ति याद मीठे बाबा मेरे बाबा हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा हर एक के दिल में मेरा बाबा।

το πόλο, χαρήκε τελπέρα.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Oh.

There's something.

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पद दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पद दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पद दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पद दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब पी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे, कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। डिफेक्ट हो जाएगा। अगर मानो कभी बददुआ का प्रभाव पर भी जावे ना तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। एक बददुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली कौन होता है, लेने वाला या देने वाला। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान

Oops.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं जिसको आज आप मेरा कहती हो? वो मेरा है या रावण का है, किसका है? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और क्या जाते है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, अपमानी में ये संस्कार नहीं है, है नहीं है ना? तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार करके कह के अलबेले हो जाते, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

giochi.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी

Lernkurve.

Transportes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए, एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी। नहीं, ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए, जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, जैसे अभी दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ करो सिद्ध हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाली।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग की हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू, एक घड़ी अविनाशी हो जाती क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाएगा, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कि अभी फिर भी सब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर की आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच उनके बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों, कैसा, ऐसा तो नहीं, इस

0: seu amigo Sakashi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में

にそっとした国家便内情が。カインバチー。

सोका आप ने दिल में बाप को बिठाए बिठाए ना कांदे लाओ बिठाए पक्का किरने के।

नहीं करती तो खराब चीज है। तो अगर कोई आप

Ready?

Söz.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़नी है। इसलिए अपने अब एक रखी है एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे। इसलिए बाप दादा अगले वर्ष जो आया कि

0: अटेंशन खिंचवा रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार, तो कभी
2: से

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है, बिंदी की तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसीलिए बाप दादा सदा कहती है कि तीन बिंदु silly।

0: जमाते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, अच्छा दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Bisous.

लेकिन पहले ही सोच के फिर फॉलो कर। तो आज के दिन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना, परिवार में भी ठीक हो। और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, परिचय तो बनती जाएगी, साधारण परिचय, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: करते हो तो कर्म का फल उसी समय

Somebody.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाबा सबको लगा रहा
4: दादा, सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना ठंडा पर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज है कि पहले आप निकालो।

कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएगी। जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस नहीं कर सकते। जाना टीचर्स वारिस

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से माइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से वायरस ज्यादा निकल सकते हैं। होना ही है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना, सिर्फ कांध नहीं हिलाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा हिलाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूछे बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वो कसे भले नहीं करो,

す。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्थिति स्त्री को बहुत सहज पार कर लेंगी, जैसे बादल आए चले गए और विदे ही अचल अडोल हो खेल देख रही। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें, अचानक अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कलम हो गई या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट बिन स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। ऐसे समय में आप एवर रेडी है, ये तो नहीं कहेंगे, पुरस्कृत कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान में संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रही है। किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Peace.

0: σώνει κατάβατο. Ναι, καλτιάτε. Βέσει σαβία πνίμη. Σιωτιό κόσο στε βίρετε. Σαν σιωτιέ. और रूप में आएगी। उससे रूप में नहीं आती तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अटेंशन रखो दो बात का, एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से क्या है, गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है। दिलाराम कहाँ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखियम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Okay. आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है, देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। I'm

Yo, ¿qué onda?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम। बेहद बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि टेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है, उसमें हाथ आ जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। नाम और मान पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई कोई में कोई मेरे बच्चे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं यार, अपन ने भाग्य का सितारा सदा चमका दे रहना, क्योंकि इस जन्म का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाले। इसलिए हिम्मत कभी नहीं यार, बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है, बात आती है और चली जाती है, जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपना ही तकदीर नहीं कमन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मन आपका मालिक होता।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता

seul.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jet.

समय पर बहुत काम में आएंगे। अभी नासिक समय नजदीक

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सृष्टि अलौकिक चेरी का बॉस सदा हर्षित है अभी सबकी बातें कहाँ गई।

समस्या ऐसी थी।

0: समझ लेता नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हूं। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ऐसे जैसी बात वैसे अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सरकमस्टेंस, वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुने कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत नहीं, दिल आराम, दिल में समाया रहेगा और आप दिल आराम के दिल में समय हुए रहे, दिल में बाप समाया हुआ है, माया की किसी भी रूप की, चाहे सूर्यम रूप हो, चाहे रायल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वपन मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना बाप दादा, मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते होली मनाना माना, मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Bitch, bitch, man. Koi vegan. Dora. Dila.

chaotic. अपने को लक्ष्य रख।

o no, Kobe? But not.

Alabama.

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष
2: पीछे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।